0: दिलावर कहाँ है? बोल।
1: लल्ला जी गजब हो गया, मेहरू को कुछ गुंडे उठा के ले गए। देखिए मैं मेहरू को लेके आता हूँ, बारात आने वाली है, अब घर की इज्जत आपके हाथ में। और हाँ सिकंदर से कुछ मत कहिए।
2: तो यहां भी आ गया इसको लेने के वास्ते। अपन जिंदगी में बहुत कमी ना देखा लंबू, तेरे से ज्यादा कमी ना आदमी अपन आज तक नहीं देखा। क्या अक्का जिंदगी भर ये तेरा मासू का था?
3: नहीं।
2: उसके बाद जब दिल भर गया तो अपना बासी टुकड़ा उठा के दोस्त के आगे फेंक दिया। छू है तुझ पर। लंबू मरद की औलाद है तो उठ।

0: अरे लाल जी, अब क्या होगा? दूल्हा भी आ गया।
1: डॉक्टर साहब, जो भी होगा अच्छा ही होगा।
0: रामलाल जी की हालत बहुत खराब है, आप इधर संभालिए, मैं उधर संभालता हूँ।
1: बेहतर।
2: हे भगवान, अब क्या होगा?

0: मैं सर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेडी और इसने मिलकर मैरो बहन को भी उठाया।
1: क्या
0: विशाल भैया उनके पीछे गए हैं।
1: राम तुम इनसे अगले को भागो, मैं इससे निपटता हूं। बोल मेरू कहां है, बोल मेरू कहां है, बोल मेरू कहां है।
2: तेरी मेरू को तो अपन जोड़ा के बाजू में दफनाएंगा क्या।

0: 너에게 사도 아베세. 헤이, 헤이, 거, 더.
1: सिकंदर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या बात है?
2: जी अबू, मैं भी यही देख रहा हूँ, वो शायद किसी काम में मसरूफ होंगे।
1: हाँ।

0: पता नहीं क्या बात है, सही बोला ना
1: आपने।
2: देखा, मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है। क्यों भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ ना?
3: पकड़ लो।
2: नहीं,
1: आपकी तारीफ।
3: भाई यही तो है वो वकील साहब। ओ
1: अच्छा अच्छा, जो यहाँ का हिसाब किताब देखते हैं। भाई बहुत अच्छा देखते हैं तुम, बहुत अच्छा देखते हैं।

0: सिकंदर को खत्म करने का एक अच्छा आइडिया है।
1: बहुत खूब मुकर्रर भाई, बहुत खूब बहुत खूब। सोडा या पानी?
0: सोडा।
1: सोडा।
0: पानी पानी।
1: दिलशा दिलशा आजो घुमा दे सर घुमा तेरी।
2: आए प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी,
3: प्यारे लाल,
2: प्यारे लाल जी कहाँ हो भाई?
4: अमा
2: वहां क्या कर रहे हो?
5: हाँ चलो अब आगे से आगे से। हाँ अच्छा आदमी है अरे कौन है? फुट